0: टेकन फ्रॉम द फिल्म बत्ती गुल, पेनल्टीज चालू। आतिफ असलम देखते देखते इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे की सुबह शबनम साही के साथ। आस्था इन वर्कशॉप, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। आई हैड माय हाउस वार्मिंग पूजा ओवर द वीकेंड। हैप्पी मंडे शबनम जी। Hope your new home brings you all the blessings and joy and memories that you seek. Thank you for sharing that, Aastha. Gore in Newcastle, welcome to the show, Vasanti. Thank you so much. Preeti in Crawley, yes indeed, it's going to be a double bill for me. Jasmine in Hayes, Sarojji in Harrow, Nine Nations Swindon, thank you so much for your messages.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: Bahut hua setback. अब होगा मेरा कमबैक।
0: A dream waiting to be revived. Watch Dr. Arambhi Monday to Friday 7 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर तुषार जोशी की आवाज में टेकन फ्रॉम चांद मेरा दिल, इश्क ने भावन दे। गुड मॉर्निंग।

0: Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Are you? Join Karishma Kapoor in India's Best Dancer. This weekend, 9:30 PM only on Sony TV.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: Next.
1: From the film Bad Show on the way. Jubi Nautiyal is this week's Artist of the Week. So Chahe, coming up.
2: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Fancy trying something new? Pepe's is launching for a limited time a rich harissa, sweet hot honey, and melted cheddar in focaccia. Harissa honey melt. Go on, try it.
3: Sonatours.co.uk, 13 days Vietnam and Cambodia. Departures every month, September to December. First 10 bookings get 100 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
4: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है. मर्डरर खुद. बीसीडीडी रीटा ब्राउन, कोलकाता पुलिस.
5: आपका और आना का रिलेशन कैसा था?
4: स्टॉप ट्राइंग टू रीड माय माइंड.
6: Get ready for a black case where truth is a lie and family is fiction and murder is the only form of redemption. Join Brown in her search for justice in Brown, starring Karisma Kapoor, now streaming on Hindi Z5.
2: Pepe's has launched to every store nationwide a new loyalty. Buy six times and get 25% off. T's and C's apply. But wait, they still give away great prizes every week and you will still get 10% off if you've downloaded the Pepe's app and ordered for the very first time. Order on the Pepe's app. It's cheaper and you get so much more when you order your favorite flame grilled chicken. Pepe's, simply Pepe-licious.
3: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं £2,000 का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 pounds के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स. अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए. दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th May to 6th August. यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर. विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड, टीज एंड सीज अप्लाई. विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू हैव ट्राइड दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।